वेल एंजॉय किया आपने गाना जिसने सेट कर रखी है इस वीकेंड की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आरटीपी रोमिंग रोडर्स इवेंट। आज सुबह 9:30 बजे हब आरटीपी के हॉर्स शू पर लोकल लोगों ने एक अनोखा बुक क्लब वॉक इवेंट रखा है। इसमें लोग साइंस फ्रिक्शन किताबों पर चर्चा करते हुए मॉर्निंग वॉक का मजा ले रहे हैं। साइंस फ्रिक्शन की जो मूवीज होती है वो तो अप टू द मार्क रहती है, स्पेशली हॉलीवुड जब बनाता है तो वो मूवी अलग टाइप की होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स ये जो सीरीज़ निकली थी ये भी मुझे काफ़ी लाजवाब लगी थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट थे एंड यू नो लाइक जो थ्रिल था स्ट्रेंजर थिंग के सारे सीजन में वैसा मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ आज तक की साइंस फिक्शन वाली। आप सुन रहे हैं रेडियो नायर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं यही कह रहा था कि 10 दिन के लिए बापा का जो आगमन होता है उसमें सारी स्ट्रेस एंजाइटी एंड थकान जो है वो ऑटोमेटिकली इतनी दूर हो जाती है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लगता। इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं वही सोच रहा था कि बापा जो उल्लास लेके आते हैं, जो आनंद लेके आते हैं, वो काफ़ी अप टू द मार्क रहता है एंड यही आनंद खुशहाली हमेशा बनी रहे ऐसा लगता है। आपने किस तरह का डेकोरेशन कर रखा है इस साल अपने पापा के लिए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप आपके पिक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे रेडियो नायरा के इंस्टाग्राम पेज पे। आप आपके पिक जो है रेडियो नायरा को टैग करके भेज सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है एंड क्या ही बताऊँ, इस शाम का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा तो इतना आ रहा है

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडरी बना नाइट्स एंड वक्त हो चुका है कि मुंबई की माया नगरी दैट इज गलियारों से मैं खबरें आपके लिए चुन चुन के लेके आता हूँ। तो पहली खबर यही है कि यार अभी भाईजान का सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान शर्टलेस हो गए, उन्होंने उनकी बॉडी दिखाई। ट्रोलर्स को जो मिल गया है ना करारा जवाब, ये एज में भी ऐसी फिजिक मेंटेन करना इट्स नॉट अ जोक, एब्सोल्युटली नॉट अ जोक। जो भाईजान ने उनकी बॉडी दिखाई है कमाल की है, एंड आपको कोई हक नहीं बनता है सोहेल को ट्रोल करने का, सलमान खान को ट्रोल करने का, बिकॉज यार ये एज में इतना मेंटेन रहना इट्स नॉट अ जोक। भाई ने यही कहा, आपकी फिजिक देखिए, आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनकी देखिए, आप क्या मुझे ट्रोल कर रहे हो। कैटरीना के बारे में भाई ने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद वेट पुट ऑन हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है, फिर से फिल्मों में आएंगी दोबारा तो अच्छे से फिट होके आएंगी। सो इट्स लाइक सच में ये ट्रोलर्स को ना

सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स में। यही कह रहा था यार, मतलब अगर आप जो ट्रोल करने वाले लोग वही होते हैं जो लाइफ में कुछ करते नहीं। इट्स लाइक कितने साल दिए हैं इंडस्ट्री को सलमान खान ने, सोहेल खान ने, और कितने अच्छे से सारी जनता को एंटरटेन किया है। आप आपकी पूरी लाइफ भी अगर इसमें घुसा दोगे तो उनके जितना फेम और उनके जितना जो मनी है वो अर्न करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो लोगों के पास काम नहीं होता है वही ट्रोल करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ट्रोल जो करते हैं लोग, हाँ आप मोटिवेट करो ना, आप ट्रोल क्यों कर रहे हो, किसी के लुक पे क्यों जा रहे हो, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इतना एज होने के बाद भी उनका चार्म जो रहे वो जब यंग थे वैसा दिखे, ऐसा तो नहीं होता है। फिर भी कितने अच्छे से सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करने के बाद ये लोग मेंटेन करते हैं, अच्छे से ये करते हैं। लाइक आप लोग जिम का सब्सक्रिप्शन तो लेते हो लेकिन कितने दिन जिम जाते हो, कुछ करते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर वना नाइट्स एंड बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार माता पिता बन गए हैं। रेडियो नायरा करता है इनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीपिका ने एक प्यारी सी बेटी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर यह खबर आते ही आलिया भट्ट से लेकर वाह कमाल हो गया चकास अनिल कपूर तक पूरी इंडस्ट्री गुड विशेष दे रही है एंड इट्स लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब इतना प्यारा कपल एंड इतनी प्यारी बच्ची, बहुत खूबसूरत बच्ची को उन्होंने जन्म दिया है। नथिंग इज लाइक दैट। एंड गौरी आगमन के टाइम में आई गेस ये सारी चीज़ें हुई है, तो मतलब क्या ही कहना, ये इतना अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यू नो दीपिका का भी कमबैक लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अभी पेरेंटिंग में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। एंजॉय करते अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपन निर्वाणा नाइट्स। एंड एक अगली खबर भी सलमान खान के बारे में। रियलिटी शो बिग बॉस 20 के प्रोमो में सलमान खान को सीने में दर्द, दैट इज चेस्ट पेन, होते दिखाया गया था, जिससे फैंस काफी परेशान हो गए थे। लेकिन आज सलमान खान ने जो है सोशल मीडिया पे बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ एक प्रैंक कर रहे थे और प्रोमो को गलत तरह से जो है वो एडिट किया था। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि यार ये गलत प्रोमोज जो एडिट होते हैं, जो पीआर टीम काम करती है, ये फैंस के लिए तकलीफदायी बनता है। लोग उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन और कोई चीज़ें सच भी होती है तो उन्हें झूठ मान लेते हैं, कहते हैं कि ये एडिटिंग है। तो क्या सच है क्या झूठ है ये AI के ज़माने में और एडिटिंग की दुनिया में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी भाई के जो लाइक डाई हार्ड फैन है वो आज भी है, हमेशा रहेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायर।

एंड बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश का जलवा बरकरार। सिनेमा घरों में इस वक्त हनुमान अंश नाम फिल्म का जो जलवा है वो देखने मिल रहा है। रिलीज के बहुत सारे दिनों के बाद भी फिल्म कुणाल खेमू की वाइब और करीना कपूर की दायरा जैसी नई फिल्मों को कमाई करने के मामले में पीछे छोड़ रही है, और जो कंटेंट क्रिएशन थी हनुमान अंश की वो काफ़ी अलग लेवल की थी। इट्स लाइक नथिंग इज़ लाइक दैट, लाइक नो प्रमोशन, नो पीआर टीम, नथिंग नथिंग नथिंग, लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रमोशन इन्होंने किया है ये काबिल तारीफ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापण निर्वाण नाइट्स, एंड वही मैं कह रहा था कि यार ट्रोलर्स को जो है ना वो इतना ये नहीं करना चाहिए, ट्रोल्स करने देना नहीं चाहिए, वही चीज़ें ठीक रहती है, और लाइक अपने आप पर हावी नहीं होने देना है सोशल मीडिया को। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापण निर्वाण नाइट्स, पक्का देसी।

एंड एकता कपूर और तमन्ना पहुंची बिहार। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडित वना नाइट्स। फिल्म मेकर एकता कपूर अपनी आने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म द वन फोर्स ऑफ द का प्रमोशन करने के लिए बिहार के 400 साल पुराने वन देवी मंदिर पहुंची। उनके साथ फिल्म की लीड जो हीरोइन है तमन्ना भाटिया भी थी, जिन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, फैंस से मुलाकात की। एंड इट्स लाइक बहुत दिनों के बाद एकता कुछ कंटेंट लेके आ रही है कसौटी जिंदगी की। आपको अगर याद होगा तो एकता कपूर की कसौटी जिंदगी की, मतलब के नाम से जो भी 96 किड रिलेट कर पाएगी सीरीज शुरू होती थी वो मोस्टली एकता कपूर की रहती थी। एंड उनमें जो ड्रामा हुआ करता था, फिर चाहे वो अनुराग बासु हो, प्रेरणा हो, कमोलिका हो, यूडी हो, बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने डिज़ाइन किए थे। बहुत ही अच्छा ये दौर हुआ करता था सीरियल के लिए। अब तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, लेकिन सीरियल के टाइम में 90s किड ने बहुत मज़े किए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, और मैं यही कह रहा था 90s के किड का जो सीरियल का दौर था, और वो टाइम में ना लाइक सीरियल के जो टाइटल ट्रैक हुआ करते थे, कावे अंजलि नाम की एक सीरियल आती थी एंड उसका टाइटल ट्रैक जो बहुत मशहूर था, बहुत मतलब टाइटल ट्रैक तो इतने मशहूर थे कि बहुत लोगों के जो डायलर टोन हुआ करती थी वो उसी टाइम के सीरियल की हुआ करती थी, ऐसा हमने रियलाइज़ भी किया है। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उस वक्त कंपोज होते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड कैसे चल रही है आपकी आज की शाम। बहुत अच्छा दौर था उस टाइम में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी और बहुत सारे लोग सीरियल में इतने उलझे रहते थे कि कल क्या होगा, फिर उसके बारे में चर्चाएं करना, ये चीज़ें 90s के ज़माने में बहुत हुआ करती थी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से। टीवी और बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जेनिफर विंगेट ने गोवा में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। उन्होंने अपने विदेशी पार्टनर विलियम के साथ सात फेरे ले लिए हैं, जिनकी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पुरानी सीरियल की बातें चल रही थी और उसमें से जेनिफर विंगेट का एक बहुत बड़ा लाइक फेस आता है। उन्होंने उनके टाइम में, प्राइम टाइम में, बहुत अच्छी अच्छी सीरियल करी थी, फिर दिल मिल गए हो या फिर बहुत सारी सीरीज़ उन्होंने कर रखी थी। तो ये काफ़ी अच्छा है यार, एंड दूसरा मौका ज़िंदगी को उन्होंने दिया है, एंड बहुत बहुत बधाई है रेडियो नायरा की तरफ से जेनिफर विंगेट को। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ये गाना।

वेल एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वागी में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण 91 नाइट्स एंड वीकेंड का वार। सलमान खान काफी ऐसे एग्रेसिव नजर आए, उम्र बाल और वजन को लेकर लगातार ट्रोल करने वालों को जवाब देने के लिए उन्होंने शर्टलेस हो गए और उन्होंने साफ कहा कि दूसरों की बॉडी शेमिंग करने से पहले खुद को देखिए जरा। एंड फैंस का यही मानना है कि सलमान खान ने जो किया वो काफी अच्छा किया। सोहेल को भी यार लोग ट्रोल कर रहे, कितना एंजॉय करके डांस कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका डांस। एंड अगेन 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आप रेडियो नारा के आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अनलिमिटेड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं आज इसके शोज। एंड कल मिलूंगा आपको रेडियो नारा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर। तब तक के लिए गुड नाइट एंड शब्बा खैर। सुनते रहिएगा रेडियो नारा, पक्का देसी पक्का लोकल।

साउथ एशिया रेडियो 10 टू 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। यू वांट म्यूजिक फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया? लिसन टू गीत।

0: क्यों कर बनाई दुनिया, इतना तो बता देता। सभी पूछते हैं ये बात कि क्यों कर बनाई दुनिया, इतना तो बता देता, या पूछने की खातिर घर का ही पता देता। सदियों से दुनिया ऊपर वाले को तलाश कर रही है, ढूंढ रही है कि कहां से आता है, कहां चला जाता है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हैं, सब लगे हैं। ना वो मिलता है ना पता देता है, और घर बहक जाऊं तो जंजीर हिला देता है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि वी आर योर होस्ट अफरोज़ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी, दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power, also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: And I will say this also. वो ये कि मेरी कोशिश है कि मैं आपकी फरमाइशें आपके कानों तक और आपके लबों तक और आपकी सोच तक पहुंचाऊं, ये मेरी कोशिश है और कोशिश रहेगी। और साथ साथ जिस तरह से कि फरमाइश पहली आपने सुनी वो मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की थी, और साथ साथ अगली फरमाइश मोहतरम जनाब चंजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की है। अपना चांद और अपनी रात क्यों ना दोनों साथ रखें, अपना चांद और अपनी रात क्यों ना दोनों साथ रखें, ऐसा ना हो हम बट जाएं, रात और चांद भी बांट रखें। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

हमको छोटी रात मिली और मिली बड़ी सी बात। अरे हमको छोटी रात मिली और मिली बड़ी सी बात। चांद जो आधा बचा फलक में, ले गया आधी रात।

कहां गुजारी थी रात तूने, अरे तेरी दलीलों से थक चुके हैं। कहां गुजारी थी रात तूने, तेरी दलीलों से थक चुके हैं, और लबों से तेरे जो दिख रहा है, लबों से तेरे जो दिख रहा है, दलीलें तेरी हम रख चुके हैं। खातिनो हजरात, तनवी तेजानी की ये फरमाइश थी ऑस्टिन टेक्सस से, नयरा नूर की आवाज़, जो पाकिस्तानी गुलूकारा हैं और एल्बम का नाम है उस पार के नगमे, वेरी ट्रेडिशनल सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, जो आपने जने कितने लोगों की जुबान से और आवाज़ में इसको सुना होगा, चन्ना किथे गुजारे आई रात वे। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, भरत व्यास का कलाम मौसीकी थी सी राम चंद्र की, फिल्म का नाम था नवरंग, 1959 की यह फिल्म थी। क्या बात है, आधा है चंद्रमा रात आधी। और उससे पहले बता दूं आपका गुलूकार महेंद्र कपूर और आशा भोसले। और अब जनावे वाला, आते हैं एक ऐसे नगमे पर जो कितनी बार फिल्में उस पर बन चुकी हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देवदास, जिसका नाम है देवदास, 1935 में बनी, फिर देवदास 1955 में बनी, फिर एक देवदास पाकिस्तान में बनी, वो सन याद नहीं मुझे, और फिर एक देवदास 2002 में बनी, और अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब तक तो लोग कहते हैं कि अरे भाई देवदास बहुत हो गए, लेकिन ये नगमा बहुत नहीं हुआ। क्या बात है, ये नगमा बहुत नहीं हुआ। तो पहले इससे कि भूल जाऊं, मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा ने फरमाइश भेजी है और कहा है कि दिस इज़ टू माय पेरेंट्स हरिवर्धन जी एंड गीता भट्ट साहिबा एंड सिस्टर्स रिद्धि सिद्धि, और भेज रही हैं समृद्धि कविता कृष्णा मूर्ति और के की आवाज़ों के साथ। फिल्म का नाम देवदास, 2002 की फिल्म है। हमें तो पहले ही फुरकत ने नहीं मारा था, समाप्त फरमाएं। और ये भी सोचें कि फुरकत यानी कि किसी की विरह में, किसी की याद में कोई मरता नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ अगर आपको फुर्सत मिल जाए गम को कायम रखने के लिए तो बहुत लंबा किस्सा है। हमें तो पहले ही फुरकत ने नहीं मारा था, और जो गम को पाले उसी फुर्सत ने हमें मारा है।

0: मुझमें अगर तू ना बेवफाई पाएगा, अरे मुझमें अगर तू ना बेवफाई पाएगा, किस्मत को बता कैसे भला आजमाएगा। शकीर बदायनी का कलाम था, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। नौशाद की मौसीकी और मोले आजम फिल्म का नाम, ऑल टाइम हिट 1960 में ये फिल्म बनी थी। अगर आप लोगों ने बहुत दिन हो गए नहीं देखी, फिर देखिए, हर बार देखने से और ज़्यादा समझ में आती है और साथ साथ और बातें पता लगती हैं, जैसे कि पाकीज़ा उन्हीं में से है। अच्छा, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ें थीं, समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश पर। टू हर फैमिली, वाह, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, और घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे। अब वो जो है ये माना मोहब्बत क्या है, जवानी बर्बाद करती है, इसको हमने बचपन में लिखा था। ये माना पढ़ाई बचपना बर्बाद करती है, और ये क्या कम है कि पढ़ जाने पे दुनिया याद करती है।
1: And Firoz G, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And coming up on Gandhi's birthday, 2nd of October, is a play, a Hindi play, Jaane Pehchaane Anjaane. Sounds mysterious. Featuring Anupam Kher, of course, and Swaroop Sampat. So it's at Memorial Auditorium, Raleigh Memorial Auditorium, downtown Raleigh. And for more information, you can contact Arvind Mahajan. Again, that's the 2nd of October, Friday, at 8:15 p.m., downtown Raleigh Memorial Auditorium.
0: और हुजूर वाला, अब चरणजीत लाल जी एंड कंचन लाल जी की एक और एपेक्स से फरमाइश रुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि प्यार करने की भला उम्र कभी जाती है? अरे प्यार करने की भला उम्र कभी जाती है, आज भी दिल मेरा तेरे लिए जज्बाती है।

0: जब जुज नहीं है बात में जज्बात नहीं है। आप समाज फरमाएं, देखिए जुज कहते हैं एसेंस उसका और या उसकी निचोड़ जो है उसका तात्पर्य है और या ये सब। जब जुज नहीं है बात में जज्बात नहीं है, दिलबर नहीं जो साथ में बरसात नहीं है। शैलेंद्र का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, यहूदी फिल्म का नगमा था ये, 1958 में ये फिल्म बनी थी। लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा आपने समाज फरमाया। और अब प्रीति राज गोपालन फुकवे से भेज रही हैं मलयालम नगमा।
1: Yes, Sapoj ji, this is a recent hit from South India, from Southern India. It appeared in the soundtrack of Little Things 4, which was a television series, and it appeared in an episode of Masala Coffee, which is a music show. And the singer is Suraj Santosh, the composer is Suraj Santosh, the co-singer is Varun Sunil, and this is based on a traditional Malayalam song about going to the fair at Thrissur. Thrissur, and Afrozi, you and I have been to Thrissur several times. Really enjoyed it. Beautiful place in central Kerala, not too far from Kochi. So, once again, by request from Preeti Rajgopalan, yes, suniye, samat farmaiye.

0: And we hear the voices of Suraj Santosh and Varun Sunil from an episode of Masala Coffee. And this song also appeared in the Malayalam television series Little Things, Season 4.
1: Mohatram Janab Aziz Dost, Mohasan Sahab and Mohatrama Bhabi, Salma Hasan Sahiba ki Farmaish Pari Nagma, Muhammad Rafi and Asha Bhosle ki Awaz mein kya baat hai, all time hit. मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा नगमा है, आप जरा देखें और फिर खुद ही कहेंगे हाँ अरे वाह क्या बात है, ये नगमा तो बहुत लाजवाब है, इसका हमें जमाने से इंतजार था लेकिन फरमाइश नहीं भेजी। अब मैं शेर कहता हूँ उसके साथ साथ, हम छोड़ के जाएंगे ना जब तक न कहें आप, समझ फरमाइए और जरा सा गैस कीजिए कौन सा नगमा हो सकता है। हम छोड़ के जाएंगे ना जब तक न कहें आप, और एहसान कहाँ छोड़ना आसान नहीं है।

कहते हैं लोग जिंदगी बस 4 दिन की है, समा फरमाएं कि कहते हैं लोग जिंदगी बस 4 दिन की है, सारी उम्र से 4 ही दिन गिन रहा हूं मैं। साहिल लुधियानवी का कलाम था हम दोनों, 1961 की ये फिल्म थी, जयदेव की मौसीकी के साथ एंड मोहतरमा आशा भोसले एंड मोहतरम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये नगमा आपने समाप्त फरमाया। अभी ना जाओ छोड़कर, हम भी अभी जाने के लिए तैयार नहीं है छोड़कर, लेकिन बता दें मोहतरम जनाब मोहसिन साहब एंड मोहतरमा सलमा हसन साहिबा की फरमाइश आई नॉर्थ कैरोलिना से, यानी के राली से। मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की अब एक इम्तिहान आपका है कि मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा, आपने जो हमको नगमे की फरमाइश की हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। अब सवाल यह है कि हम आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपकी फरमाइश तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, हम देखते हैं इसको बिना सुने हुए आपकी आवाज देखें जरा। शक हो गया उसने कहा चाहत का शुक्रिया, जरा समा फरमाएं पूर्णिमा जी, शायद हम आपके इम्तिहान तक पहुंच चुके हैं। शक हो गया उसने किया चाहत का शुक्रिया, वरना तो चाहतों में क्या चाहत का शुक्रिया।

0: प्यार के काबिल जो समझा आपका एहसान है। अरे प्यार के काबिल जो समझा आपका एहसान है और आपसे उल्फत निभाना क्या कोई आसान है। राजा मेहंदी अली खान का कलाम था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। पूर्णिमा गुप्ता साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने नगमा भेजा हमको। अनपढ़ फिल्म 1962 की फिल्म है, क्या बात है। मौसीकी मदन मोहन की, ऑफ कोर्स। ज्योति करीर साहिबा की एक और फरमाइश हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से आपने फरमाइश भेजी है, समाप्त फरमाइए आप अपनी फरमाइश, लेकिन पहले मैं कुछ कह दूँ। बहुत पुराना ये शेर है मेरा, लेकिन देखिए पहले इस तरह के शेर, इस तरह की लाइनें लिखता था। कभी लखनऊ की महफिल से कोई आवाज़ आती है, अरे कभी लखनऊ की महफिल से कोई आवाज़ आती है, और कोई मासूम शहजादी फ़ज़ा में गुनगुनाती है, और कभी ख्वाबों की चिलमन में, कभी ख्वाबों की चिलमन में ज़रा झनकार सी होकर हरी में नाज चिलमन से निकल कर मुस्कुराती है। लेकिन मैं तो अब आजकल ऐसा है कि मेरी शायरी में वो बात अब इस तरह से है कि सदियों से देखता हूँ हर रात एक ख्वाब, सदियों से देखता हूँ हर रात एक ख्वाब, मिट्टी की चिलमनों से कोई झांक रहा है।
1: ये जो चिलमन है

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Geek Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgunj, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Oakland, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
2: This is Geet Bazaar Radio, Naira Ki Peshkash. We are your hosts, Afroz Taj, John Caldwell and Ravi Chirukri. और साथ में ये भी कहता चलूं 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं इतवार के दिन.
3: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
4: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
2: परदे में जो कुछ देखा चर्चा नहीं किया. हाथीनो हजरत, हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक शेर जानबूझकर आपसे कहने के लिए लाता हूं. पर्दे में जो भी देखा चर्चा नहीं किया. अरे पर्दे में जो भी देखा चर्चा नहीं किया. हां जब से मगर हमने पर्दा नहीं किया. तो खातून हजरात, जो हम आज का शेर आपके लिए लेकर आए हैं उससे आपको याद भी दिला दें कि पर्दे के बारे में बातचीत होगी. कितने तरह के पर्दे होते हैं, ये नहीं होते हैं. राजकुमार सिन्हा की पहली फरमाइश पर्दे के बारे में है. मुंतजर हजारों एक लम्हे के जलवे को. है मुंतजर हजारों एक लम्हे के जलवे को. कब हुस्न आम होगा और कब सलाम होगा. यू आर लिसनिंग टू गीत

0: हटा दो।
1: पर्दा छुए तो पहले ये सोच लीजिए, ये शेर भी मेरा है ऑफ कोर्स, बताने की तो अब जरूरत नहीं रह गई, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगला नगमा महनाज की आवाज में है, जो मेरी फेवरेट सिंगर हैं, बहुत स्वीट आवाज है। पर्दा छुए तो पहले ये सोच लीजिए, पर्दे के पीछे देखिए एक आग है छुपी।

कल की तरह से छोड़ के प्यासा ना जाइयो। अरे कल की तरह से छोड़ के प्यासा ना जाइयो, चेहरे से अपने आज तो पता उठाइयो।

बाहों में जो आओगे पर्दा नहीं टूटेगा। देखें आप इसको कि मैंने कभी इस तरह का ख्याल कभी सोचा नहीं, इसे लिखना पड़ेगा और लिखने में मजा आता है वैसे तो। बाहों में जो आओगे पर्दा नहीं टूटेगा, बाहों में तुम रहोगे और मुंह छुपा रहेगा।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

0: पर्दा नशीं जो हो गए एहसान क्या किया, अरे पर्दा नशीं जो हो गए एहसान क्या किया, सुना पड़ा है सारा गुलिस्तान क्या किया।
1: पर्दा नशीं तुझसे नहीं कोई कहीं जहां में हसी, पर्दा नशीं तुझसे नहीं कोई कहीं।

गाँव पर्दा नशीं गराज कहीं मिल भी जाओगे। समझ फरमा ही है कि पर्दा नशीं गराज कहीं मिल भी जाओगे, हम जानते हैं तुम कहाँ चेहरा दिखाओगे।

वो कौन हैं जो देख के देखा नहीं करते? समात फरमाइए, फिर दोबारा मैं कहता हूं, अरे वो कौन हैं जो देख के देखा नहीं करते और पर्दे की तरह रहते हैं, पर्दा नहीं करते।

पर्दा जो उठा मेरा, मेरा न बुरा होगा। समाज फरमाए, जरा सा मुश्किल भी हो सकता है कि पर्दा जो उठा मेरा, मेरा ना बुरा होगा, जो राज भी खुलेगा वो आपका ही होगा। जो बात मैंने कही कि पर्दे की तरह रहते हैं लोग लेकिन पर्दा नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे में हैं और वो ऐसा लगता है कि पर्दा नहीं करते। पर्दे की शर्तें हैं और वो शर्तें ये हैं कि पर्दा ना करो इसकी जरूरत नहीं है, पर्दा आंखों का होता है। पर्दा करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की आदत ही सबसे बड़ा पर्दा है। हजारों लोग दुनिया से पर्दा करके चले जाते हैं लेकिन वो जाते नहीं, ख्यालात में रहते हैं। ऐसे ही हम जा रहे हैं मगर जा नहीं रहे, आपके ख्यालात में होंगे। वक्त मजबूर कर रहा है हुजूर वाला, और 2 घंटे 2 मिनट में निकल गए पानी की तरह हाथ से। और उसके बाद अगला नगमा दामोदर पांडे की फरमाइश के साथ हम डेडिकेट करते हैं इसको रमेश कालज्ञानम जी, आप भी सुने, बड़ा मजा आएगा। और 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वी आर योर होस्ट अफरोज ताजान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। आज जा रहे हैं, चलते चलते मैं कहूंगा जाते तो हैं महफिल से, दिल रह गया यहीं पर। हाय हाय, देखें आप, और अभी इतला मिली है। जाते तो हैं महफिल से, दिल रह गया यहीं पर, जिसने भी चुराया हो वही हाथ हिला दे। मोहब्बत जिंदाबाद।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: आज जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Radio Naira par aap sun rahe hain Gitanjali.
2: तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, what happened?

0: का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: We are delighted to bring our play.
2: Jaane Pehchaane.
1: Can you meet together, all of you?
3: Jaane Pehchaane Anjaane.
1: Dedicated superstars of this play are saying Jaane Pehchaane Anjaane, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. A lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. If you have any issue, if you have a problem, please look at the number and call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
4: Anumale.
5: And lots of laughter.
1: Lots of
5: emotions.
1: She also speaks in between. She is. Everybody. My name is Anupam Kher.
6: I'm Meghna Malik.
7: I'm Swarup Sampal.
8: Maya Sharma.
9: Shraddha Mandale.
10: Carmen D'Souza.
11: Gajendra Hire.
12: Writer director Gajendra Hire.
13: I'm Vikas Rawat.
6: Yes.
1: And we are coming to America and to Canada. Rajender Ji, Jamado.
6: बेसब्री से इंतजार है आप लोगों से मिलने का.
11: जाने पहचाने
6: यूएसए.
1: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं. बच्चों को शुरू करकशिर पटका
7: जरूर आओ. जो टिकट लाइन है मजा उसे.
6: राम राम जी. जल्दी से जल्दी मिलन आ रहे हैं थारे के.
8: अम्मी सब एक साथ आई थी अमेरिका. आपने सबसे मिलेला
1: देखा. अलग अलग भात भात के और कोई
11: नक्की सुंदर अनुभव. सुंदर सुंदर एक अनुभव घेऊन जा.
7: लवकर लवकर टिकट बुक करा
13: प्लीज. बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही.
1: अरे वाह. इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कनाडा विद द प्ले. जाने

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायडा, पक्का देसी पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4, 90 AM एंड 99.9 FM SG3 तेलुगु नायरा फेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंसन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

क्या गाना था यार, एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एलजी 4 पर, 90 एएम एंड 99.9 एफएम एलजी 3 पर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग डील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage, Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक्स, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4, 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉक। पता है बहुत थकी आज सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली हैं, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: listener on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Room Center.
1: हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट. पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इस और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पता देसी, पता लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूंस एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Paka Desi, Paka Local.

0: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Racha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती, चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.
1: You don't wanna settle, you move, it's killer. Hey, beautiful. Hey, beautiful.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Till then, go and enjoy. Sundariya Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम 99.9 एफएम एचडी 34 तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉप कहा नारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: is the multi-dargani Kabal. One more time, welcome Haji on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट वीक 40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट वीक 40 स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. सी द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. Point racing is back at North Wilkesboro. It's summertime time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahi jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka deshi, pakka local.
1: Tujhe dekh ke pata hai kya lagta tha? Ki tu kuch bahut bada karega. कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लगा।
2: ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM एंड 99.9 FM, SD3 4 तेलुगु नायरा फेम। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक।
3: वेल, हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the MCBU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्लासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन with more than 60 vendors from around the world. This family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on-site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल
1: एक नंबर। मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM 99.9 FM SD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM एंड 99.9 FM SD3 फॉर तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बोल मेरा पत्थर का
1: ब्रेक नहीं कर सकती।
0: गाने हिटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो पाठशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle, A1. ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,

करा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

है कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 मैं रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी ये इवनिंग? हर तरफ, जैसे मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, जब से बाप्पा का आगमन हुआ है तब से हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा है, एंड वो है गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वातावरण जो है वो काफ़ी भक्तिमय हो चुका है, हर जगह पे रौनक जो है वो छाई हुई है, और इसी प्यार भरे माहौल में इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं क्या बताऊँ। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी तो हो ही नहीं रही है। ऐसे पावन वातावरण में एंजॉय करते हैं इस शाम का यह पहला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: I'm mute on the mic, writing what I feel.
1: वेल एंजॉय किया आपने ये गाना. गाना था वाकई में काफी बेहतरीन, जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स. और अब रुक करते हैं कि लोकल खबरें क्या है. तो पहली लोकल खबर ये है कि रैली के सिटी लीडर्स रैली डाटा सेंटर मॉरेटोरियम पर 6 महीने का अस्थायी प्रतिबंध लगने पर विचार हो रहा है. इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश गए हैं और इस पर जो आखिरी फैसला है वो अक्टूबर की मीटिंग में होगा. लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि शायद रोक प्रतिबंध जो है वो रख सकते हैं एंड इसके बारे में विचार विनिमय जो है वो चल रहा है ऑलरेडी. सो लेट्स वेट अराउंड अक्टूबर एंड तक. उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा ही, और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है आई विल लेट यू नो. फिलहाल एंजॉय.

सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड स्कूलों में सुरक्षा के लिए बड़ा बजट, ये बहुत ही अच्छी खबर आज लेकर आया हूँ। वेक काउंटी के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगभग 4.7 मिलियन डॉलर का बजट पास हुआ है। इससे क्लासरूम के दरवाजे जो है वो मजबूत किए जाएंगे और नए सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजबूत हो रहा है, जैसे कि दरवाजे मैंने आपको कहा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सीसीटीवी कैमरे तो यार नीड ही है, वो तो चाहिए ही, मतलब उसके बिना तो कुछ है ही नहीं सिक्योरिटी का, मतलब है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है और अच्छी चीज़ें हो रही है। 4.7 मिलियन डॉलर का बजट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बजट भी खर्च हो रहा है, अच्छी खबर है। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कैरी इलाके में सोमवार को पानी की मेन पाइपलाइन फट गई थी, जिससे 50,000 लोगों को पानी उबाल कर पीने को कहा गया था। आज जांच के बाद अफसरों ने बताया है कि नल का पानी अब पूरी तरह साफ और सुरक्षित है, अब उबालने की जरूरत नहीं है। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो थोड़ा बहुत पानी में कीटाणु और ये सब चीज़ें रहती है, उबाल कर पीने में क्या हर्ज है ना। लेकिन अब आप बेझिझक पानी जो है वो पी सकते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी सुरक्षित पाया जा रहा है एंड कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें तो बताकर आती नहीं है, लेकिन आने के बाद डट कर सामना करने में ही भलाई है, ऐसा मुझे लगता है। कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम एंड कैसे चल रहा है आपका गणेश फेस्टिवल, मुझे बताइएगा ज़रा। फिलहाल एंजॉय करते अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड जैसे कि मैंने पहली ही खबर बताई थी, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि रैली के बड़े नेता शहर में डेटा सेंटर्स बनाने पर 6 महीने की रोक लगाने की प्लानिंग कर रही है, पर आखिरी फैसला अगले महीने के अक्टूबर मीटिंग में होगा। मतलब अब तक चल रहा है कि लाइक पानी का जो दिक्कत होती है, उसके बाद जो वेस्टेज होता है, नेचर को जो हानि पहुंचती है, वो ना पहुंचे इसके कारण रोक लगाई जा सकती है। लेकिन पूरी तरह से रोक लगाई जाएंगी या नहीं, आखिर में होने वाला क्या है, ये तो अक्टूबर एंड में ही हम लोगों को पता चलेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एंड अगर नुकसान हो रहा होगा इन चीज़ों की वजह से तो डेफिनेटली रोक जो है वो लगाई ही जाएगी। तो एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, आप सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, बने रहिएगा रेडियो नायरा।
1: You're listening to WCMC-FM Holly Springs 99.9 FM HD4, W270 DT Durham 101.9 FM, WDUR Durham 1490